जगत जिनंदा रख ले अपनी कृपादार गुरबाणी सानू जिंदगी जीवन का सीधा राह दिखाती है गुरु अमरदास जी का यह शब्द गुरु ग्रंथ साहब है असी अपने दुनियावी कामां काजां नूं छड के चंगी जिंदगी जीवन लई की कुछ करना चाहते हैं की कुछ किया जाना चाहिए योजा दिशा निर्देश सानू इस शब्द तो मिलता गल्लां जुगल प्रोग्राम के पहले सैगमेंट के असी जिथे जिंदगी जीवन के दिशा निर्देश ने गलबात करते हैं वो असी कुछ अजे मसले भी विचारते हैं जिन्होंने सन्मुख रख के असी अपनी जिंदगी सौखी कर सकते हैं साड़ी हुण तक की मेहनत मुशक्कत इन्नी है कि सानू मेहनत करनी चाहिए असी इन्नी एक जिंदगी सौखी करिए अजोके युग दे विच जिथे नवें नवें इन्फलुएंसर आ रहे ने यूट्यूबर आ रहे ने एक पीढ़ी जो कि पुराने रवायती ढंग तरीके नालों वक्री दुनिया में निकल रही है वो इसनू एक सौखा करन दे ढंग तरीके वेख रही है इस सौखे करन दे चक्कर विच की असी जिंदगी सौखी करते हैं नवी पीढ़ी नू शायद नवी पीढ़ी का मतलब वो है जिन्हों अजक जैनजी भी कहें ने जैन जी कहें जैन अल्फा कहें नवी पीढ़ी का मतलब वो जवान मुंडे ने जो जो कि डिजिटल दुनिया के नाल तैयार होए जिन्हों इनफोरमेसन का फ्लड है तो जेडे अपने काम कार एक जगह टेक के नहीं बह सकते जो काम कम ना समझ के हुए जिंदगी जीवन का एक छोटा जहा नज़रिया समझते ने पर जिंदगी अपने आले दुआले नालों कट के सोशल तो समाजी दुनिया के होर अजोके डिजिटल तरीके वरतना चाहते ने एलविन टॉफलर की किताब फ्यूचर शॉक के गल बड़े कई साल पहला आखी गई इस तो अलावा कोई अज तो जे मैं कह कि 70-80 साल पहला साहित्यकार ने जो कुछ जो विजन दुनिया का लिया वो भी गल् दसिया गई कि साढ़े आले दुआले जाल बुनिया जा रहा है मनुख की सोच सोझी काबू करना जाल बुनिया जा रहा है गुरु ग्रंथ साहब जो शब्द सानू जिथे जिंदगी जीवन लई उस परमात्मा की मेहरों करम की गल करते हैं नाल ही नाल असी जे उसनू अपने अजकल दे जीवन दे ढंग तरीके च रख के वेखते हैं तो एक गल मेरी नज़र च सामने आती है कि साडा इस वेले सब तो वड्डा चैलेंज अपने आप नू फ्री करना है अपने आप नू फ्री टाइम देना है जिहड़ी मानसिक संतुष्टि असी करदे हां वो करन दा मतलब है कि साडे कोलों दिन दे विच की अपनी रूटीन काम तो अलावा 10 मिनट अद्धा घंटा घंटा अपने बारे सोचण दा अखां बंद करके ध्यान करन दा लंबे लंबे साह लै के अपने आप नू रिलैक्स करन दा किते फोन परे रख के कुदरती गोदी विच गल्लां पता करन दा तुरन दा सज्जन बहन खलोण दा समा है असीं एक टाइम कई कई काम करदे हां उन्हां कई कई कामां दे विच जाणे जे साडे दिमाग दे विच बहुत सारा दबाव रहिंदा प्रेशर पै जांदा इहनू हाइपर एक्टिव मूमेंट भी कहिंदे ने इहनू उस परमात्मा दे नाल जुड़न दे लई कुदरती तौर तरीके तो परे हट के असीं अपने मानसिक तनाव विच लम्मा समा रहिंदे आ उहदे नाल साडे अंदर शरीर दे विच रुकावटां भी आउंदियां ने सही ढंग तरीके नाल काम करिया शरीर अपने आप दे विच बदलदा बदलदा किसे ना किते बीमारी या रोग लग जांदा है सियाने यही कह रहे ने कि इस काम नू करन दे लई दिन दा एक निश्चित समा होवे अपने आले दुआले स्क्रीन दी दुनिया तो परे हट के जीवन दा समा होवे तुरन फिरन दा समा होवे अपनियां बाउंड्रीज अपनियां सीमावां फिक्सत करो ते नो कहो जे तुसी नो कहोगे हर काम नू हाँ नहीं करनी जो दिता गया उनू वेखना नहीं ते नो ना करन दे नाल साडा जीवन सौखा वधिया हो सकता है जे किसे एक घर दे कमरे दे विच बिल्कुल शांत कोना हैगा उस कोने विच जाके बैठ जाओ अखां बंद करके बैठ जाओ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸਰੀਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਮ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸਰੀਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ

पत्ता भी नहीं हिलता उसके हुक्म बगैर काके का गीत उसी सुने जो गलबात असी जिंदगी जीवन की कर रहे हैं उस गीत उसने बहुत सौखे लफ्जों के वीडी गल साढ़े सामने वधिया पेशकारी करके किया बहुते सियाण गल करद्या कई बार साढ़े कोल योजे मसले आ जाते हैं कि जेरे सानू तुर अंदर तक सोचने लै जाते हैं सियाणिया गल् मैनू लगता हों सारिया होंदिया ने तो जरूरी नहीं हों कि असी कोई भी गल ऐसी हो जी सू सी ना लगी हो फिर भी असी उस जीवन के ढंग के ढंग से वेखते हुई अक्सर साढ़े साहित्य दुनिया के राज लिखे पे ने तो राज वक् वक् कहानियां नाटकों के पात्रा के रूप में बंद जीवनिया के रूप में बहुत सारे इंकशाफ किए हुए हैं जिन्होंने असी अक्सर विचारते हैं नाटक एक सी मंटो विच जिथे मंटो दे पात्र दी जिंदगी बारे है उथे इस नाटक दे लखारियां ने इस नू अपने मंटो राही बहुत सारे समाज दे उस वेले दे रूप नू पेश करन दी कोशिश भी कीती गई मंटो कहिंदा है कि मैं जिंदगी दे किसी भी मौके इस ते पागलपन दी इस हद तक काम करदा कि मेरी रूह भी पागल हो जांदी है कई बार लगता कि मेरा दिल बहुत बुझया हों तो कई बार मेरा दिल का गुस्सा उदासी बदल जाता है कई बार लगता कि मैं अपने गमा गिलिया शिकव्या दबिया पे आया मेरी उदासी मैं बहुत कमज़ोर करने वाली लगती है मेरी हूँ की जिंदगी मुसीबत न भरी है दिन रात मेहनत मुश्किलों सिर्फ इन्ना कमा सकता कि जिस उस साड़िया दिन दिया मसा लोड़ा पूरिया होंगे हो ये दिन दुख देने वाला दिन ये दुख देने वाला एहसास स्योंक वाग सानू सारू खाता रहा है हर बंदा ये सोचता है जे मैं अज अखा मीट गया तो मेरे पिछे मेरे पत्नी के बच्चों का की बनेगा मंटो भी यही सोचता कि जिस तरह मैं जिनी कमाई कर रहा मेरे पिछे मेरिया धियां तो मेरी वोटी का की बनेगा उन्होंने देखभाल कौन करेगा दुनिया में सब तो जे कोई खतरनाक चीज़ है तो वह भुख है तो नंबर दो तो गरीबी है भुख जिदा दी हो बहुत खतरनाक होंगी है मैं दोबारा लाइन पढ़ रहा भुख जिदा दी हो बहुत खतरनाक होंगी है आज़ादी के भुख्या जेकर गुलामी दंजीर पेश की जा इनकलाब जरूर आएगा रोटी के भुख्या जे फाके ही कट्टे पैण तो वह तंग आ के दूजे दुरकियां खोन गए संसार अज जिन्या भी लाहत ने भुख उन्हों माँ है भुख मंगता बनना सिखाई है भुख जुर्म करने इकसाई है भुख किसी इज्जत वेचण से मजबूर कर दी है भुख उगार उग्रवाद सिखाई है तो भुख का हमला बड़ा सख्त हों इसका वार बहुत भरपूर तो जख्म डूंगा हों भुख दीवाने पैदा कर दी है पर यह भी गल याद रखियो दीवानगी भुख पैदा नहीं करती हूँ अजोके युग में जिथे असी हैरान होंने किते कोल खान नू रोटी नहीं एक माँ घर चूल्हे च खाली पतीले पानी पा के कड़छी फेर के न्याणियों कुछ बना का सास कराती है तो सुकी रोटी बना के खवा के अगले दिन कुछ होर लभन देन का लारा ला के सुवा दें दूजे पासे पिछले कई दिनों के कई साल पहला ज़्यादा भी गल नहीं तीन चार साल पहला गल होगी मध्य प्रदेश के एक छोटे जे पिंड भुख ना विलकती एक कुड़ी भात भात कम तोड़ गई चौल लभदी सी खाने
ਮਾਂ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਾਲੀ ਪਰ ਕੜਛੀ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਸੀਜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 15,000 crore ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਟਿਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦੇ ਬੱਚੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ